0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटेला
1: इटियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो